0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय

0: जो हाउसिंग और हाउस लिस्टिंग का जो ऑपरेशन है उसमें नंबरिंग सेंसस नंबर्स घरों में डाले जा रहे हैं कि नहीं, तो वो हमें अच्छा लगा कि ये लोग बड़ी एक सीरियसनेस के साथ ले डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो मैंने ये बताया कि हाउसेस थोड़े दूर दूर
1: Daksing shirayi tashis paldon tang topa gune salkani jabru shik sanajat, skasata kongrang gune salkani ijabru wang sanajat.

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: Dakhsin shirayin film ilooyi dikrim sanatsats, nga jaya kashwani leni shionjik tangins, nga tu chudosh chu chaduk, kasata FM Gold Delhi dikrim sanatsats.
1: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इचकल करंजी के कल्पंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal farm today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santali Jehera and Ho Jehera Skill Center and Pahadpur school. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Bengal Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings

0: कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता पर अपना समर्थन दोहराया है। कतर ने कहा है कि संवाद और शांतिपूर्ण तरीकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। ये बयान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस के बीच कल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में हुई बैठक के बाद आया। कतर के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों तथा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे राजनयिक प्रयासों की भी समीक्षा की गई। भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष बन गया है। वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे।
1: विवेक अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी विजय बताया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कार्यबल के लिए भारतीय शिष्टमंडल के पूर्व प्रमुख के रूप में उनके अनुभव से संस्था की क्षमता और मजबूत होगी। कार्यबल की पूर्ण बैठक में धनशोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के प्रयासों की समीक्षा की गई। बोस्निया, हर्जेगोविना और इराक पर निगरानी बढ़ाने तथा अल्जीरिया और नामीबिया को कार्यबल के ग्रे लिस्ट से हटाने का भी निर्णय लिया गया। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ। वे मेक्सिको की एलिसा डिएंडा मद्राजो का स्थान लेंगे। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल धनशोधन और आतंकवाद के खिलाफ धन मुहैया कराने पर अंकुश लगाने वाली मानक वैश्विक संस्था है। भारत 2010 से ही कार्यबल का सदस्य रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्मित एयरफोर्स वन विमान का अनावरण किया है। अगले महीने की शुरुआत में प्रेसिडेंशियल सर्विस में आने से पहले इस विमान की उड़ान शुरू होने की आशा है। प्रेसिडेंशियल बेड़े के मुख्य केंद्र ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस विमान का बड़ा आकार सर्वाधिक प्रमुख बदलाव है। उन्होंने घोषणा की कि एयरफोर्स वन विमान अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर नेशनल मॉल में आयोजित समारोह में फ्लाई पास्ट में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि तुर्की में अगले महीने नेटो सम्मेलन के लिए भी इसके उपयोग पर विचार किया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। बोर्ड ने इस वर्ष 1 अगस्त से शोधित समय सीमा और सख्त अनुपालन नियमों के साथ ओपन मार्केट शेयर खरीदने की व्यवस्था फिर शुरू करने को भी मंजूरी दी है। दुनिया भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग।
2: संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में 210 से अधिक भारतीय दूतावासों की भागीदारी सामूहिक कल्याण के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में योग की भूमिका को दर्शाती है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। इससे पहले ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर ली। कैमरन बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर की बदौलत अमरीका ने पहले हाफ में ही मैच पर पकड़ बना ली। मैक्सिको के बाद अमरीकी टीम नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहली बार अमेरिका ने एक मैच बाकी रहते हुए ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स का सामना स्वीडन से रात 10:30 पर होगा। दोहा डायमंड लीग में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्रीलंका के रूमेश थरंगा पथिराज ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। नीरज चोपड़ा ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा निर्धारित 82.61 मीटर के लक्ष्य को पार कर लिया है। नीरज चोपड़ा को पहले ही 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 32 सदस्यीय टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उबरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किए गए हैं। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने धर्मशाला में पहला एक दिवसीय मैच 7 विकेट से जीता था और इसके बाद भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में भी जीत हासिल की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी वार्ता के अगले दौर के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। भारत पहली बार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष बना। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। विदेश में स्थित भारतीय दूतावास 2500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को हराकर पहली जीत दर्ज की। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को हराकर नॉकआउट दौर में। और भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा ने 2026 दोहा डायमंड लीग में चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स और मैं हूँ आपके साथ भावना। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868687353। तो फिर देर किस बात की है, भेजिए हमें ईमेल या करिए व्हाट्सएप। ले लीजिए, आ गया है हमारे पास पहला ईमेल। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम का, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु नई दिल्ली से हमसे जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं ये।

आकाशवाणी के साथ हमारा दिल लगा हुआ है और हमेशा हम दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत खुशी से सुनते हैं। ये हमें कृष्णा जी ने लिखकर भेजा है और इनका संदेश हमें मिला है राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ ये इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। महेश अग्रवाल और मीना अग्रवाल जी का बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे पास संदेश आया, बहुत ही प्रेम भरा संदेश है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, कितिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का संदेश भी हमें मिला है। इनकी पसंद का गीत भी हम सुनवाएंगे। और सुखविंदर सिंह जोड़ा साहब हैं, सीटी दीवाना इनके साथ हैं, कृष्णा पार्क दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है, इनकी पसंद का गीत ये।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: .1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है दिल का मेल बॉक्स। कृतिका का संदेश हमें मिला है जनकपुरी दिल्ली से, और हिमाचल प्रदेश से हमारे पास संदेश आया है वैद्यराज जी का। अपनी अपनी पसंद का ये गीत सुनना चाहते हैं। फिलहाल जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो है बोधराज खोरवाल जी उत्तम नगर दिल्ली से, जो हमने कहा था कि इनकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे, ये रहा।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आदाब नमस्कार जी। ये संदेश हमें मिला है दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम में जसपुर उत्तराखंड से। रियासत हुसैन सिद्दीकी हैं, नाजमा बेगम सिद्दीकी हैं, रियाज हैं, रिफाकत हैं, मोहम्मद रिहान हैं, समरीन परवीन हैं, माहिरा नूर हैं और कहते हैं किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लीजिएगा। क्या बात है आपकी। इसके अलावा हमारे पास ये गोयल साहब का संदेश आया है, रोहिणी दिल्ली से। सतप्रकाश गोयल हैं, रेणु गोयल हैं, लिखते हैं मेरी हसरतों की दुनिया तू मिले कहीं जो मुझको, तू मिले कहीं जो मुझको, सीने से लगा लूं तुझको। ये बहुत ही खूबसूरत सी शायरी या कहें कि शेर इन्होंने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा और कौन है हमारे साथ जो जुड़े हैं? संदीप मक्कड़ साहब हैं, इन्होंने भी अपनी बात हमें लिखकर भेजी है। जलंधर पंजाब से इनका संदेश हमें मिला है। और तुलसी मस्कीन है, वीना मस्कीन है, आशीष राजा है, चैतन्य मस्कीन है, मेघा मस्कीन है, इनका गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से संदेश आया है। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, इन सबका संदेश भी हमें मिला है। बबलेश जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इनका पूरा नाम क्या है? बबलेश पवार है, डैनी पवार है, मनीष पवार है, ये गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश चौहान राम देवरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डांगरी से बाबूराम जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और नमस्ते इन्होंने बहुत प्यार से लिखकर भेजा है, तो नमस्कार आपको भी जी। इसके अलावा अफरोज शेख साहब हैं, इनका हमें ईमेल मिला है, एड्रेस नहीं मिला है, इन्होंने केवल अपना नाम लिखकर भेजा है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

दत्तरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, इनका संदेश आया है हमारे पास। गणेश जी का है हमारे पास संदेश। ये हमारे पास कहाँ से आया है? गंज डुंडवारा से हमारे पास ये संदेश आया है। शमसुल कमर राही है, शाहीन फातिमा है, अनु खान है, अदनान खान है, फैजान खान साहब हैं, और इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा गणेश वाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार का हमारे पास संदेश है। दिल्ली वालों का बोलबाला है FM गोल्ड में। इस प्रोग्राम का नाम दिल का मेल बॉक्स नहीं, दिल्ली का मेल बॉक्स रखो। क्यों भाई क्यों? कोल्हापुर से आपका संदेश आया और हमने पढ़ा, अभी भी नाराजगी है क्या आपको? अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ और कौन है? ये है रंजीत कारेगांवकर, कंचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर, समरजीत कारेगांवकर, परभणी महाराष्ट्र, शिवराम नगर, बसमत रोड से हमें इनका संदेश मिला है। और कौन हमारे साथ हैं? हमारे साथ हैं उमेश कुमार जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, अनुज कुमार हैं, सोनित कुमार हैं, खयाला से इनका संदेश हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने प्यार भरी संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, निगत परवीन अब्बासी हैं, शाहनवाज अब्बासी हैं, और फरदीन अब्बासी हैं, सुहान अब्बासी हैं, अरजान हैं, अबान हैं, और पूरा अब्बासी परिवार है, सरफराज भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा एक और संदेश पढ़ देते हैं। डी कॉस्ट्रा फैमिली है, जॉन है, रोजी है, पोल है, विलिस है, जनकपुरी सहारनपुर से इनका संदेश हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार हम तक पहुंचाने के लिए। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं कहीं नहीं जा रही, 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन इससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and the Prime Minister will visit Pahadpur village and offer prayers at Sacred Grove Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Prime Minister Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Banga Divas today. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, मैं हूं आपके साथ भावना, और आज हम जहां चलने वाले हैं वो है ऋषिकेश। उत्तराखंड के देहरादून में बसा एक खूबसूरत पर्यटन स्थल जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। पवित्र मंदिरों, घाटों, शांत आश्रमों और सदाबहार जंगलों से घिरे इस शांत शहर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है।

लक्ष्मण झूला जो है ना, यहाँ पर गंगा नदी के ऊपर बना एक हैंगिंग ब्रिज है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर गंगा नदी पार किया था। पवित्र गंगा नदी के तट पर त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। त्रिवेणी घाट का उल्लेख महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी मिलता है। घाट के स्नान से पवित्रता और शांति तो मिलती ही है, साथ ही साथ ना यहाँ कुछ देर बैठकर पानी में मछलियों को तैरते हुए आप देख सकते हैं और उन्हें खाना भी डाल सकते हैं। आटे की गोलियां मिलती हैं उनको लेकर, कुछ लोग तो पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं इन मछलियों को आटे की वो गोलियां डालते हुए। बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप वो गोली डाल रहे हैं और मछली ऊपर मुंह करके लपक के उसको पकड़ लेती है। कैसे पूरा दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता।

बीटल्स आश्रम है यहाँ पर, जिसे 84 कुटी के नाम से भी जाना जाता है। रामझूला से 1 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के स्वर आश्रम में एक चट्टान पर बना है ये बीटल्स आश्रम। ये वही आश्रम है जहाँ 60 के दशक में बीटल्स बैंड ने कुछ समय रहकर ध्यान किया था। उन्होंने यहाँ ना कई गीत भी लिखे थे। और इस आश्रम के परिसर में एक पूर्व मंदिर, पुस्तकालय, रसोई, महर्षि योगी का घर और मेडिटेशन झोपड़ियां हैं। दीवारों पर रंगीन चित्रकारी है और यहाँ एक छोटी गैलरी भी है। इसके अलावा ऋषिकेश में वशिष्ठ गुफा है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ ध्यान किया था। और भी बहुत कुछ है ऋषिकेश में जानने लायक। सुनते रहिए प्रोग्राम तस्वीर।

जब भी आप ऋषिकेश आएंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति सुकून मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ 13 मंजिल मंदिर, इस मंदिर को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में 13 मंजिलें हैं, इसके नाम से ही समझ में आता है 13 मंजिल मंदिर नाम है, और आकर्षक सुंदर वास्तुकला है। ऋषिकेश अगर आप पहुंचे और आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की, तो इसका मतलब आपका ऋषिकेश आना अधूरा रह गया। शिवपुरी ऋषिकेश की सबसे प्यारी और रोमांचक जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ ना आसपास घने जंगल और पहाड़ी दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी बहुत खास है, साथ ही बॉडी सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग ये भी यहाँ होता है। शिवपुरी आकर पर्यटक

कैंपिंग, पर्वतारोहण, जंगल की सैर और जंगल ट्रेकिंग भी करते हैं। बहुत खास है ये शिवपुरी यहाँ पर। जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट। क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। ये प्रोग्राम है तस्वीर, मैं हूँ आपके साथ भावना और ऋषिकेश की रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। नीलकंठ महादेव मंदिर है, ऋषिकेश शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ये भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है ये, और ये मंदिर समुद्र बंधन की गाथा दर्शाता है। मंदिर में ताजे पानी का एक झरना भी है जिसमें स्नान करके भक्त मंदिर में पूजा करने जाते हैं। नीरगढ़ जल प्रपात, ये ठंडे पानी की एक सुंदर संकरी धारा है जो घने हरे जंगल के बीच एक चट्टानी इलाके में बहती है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जंगल से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और एक चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है। इसके अलावा आप इस जंगल के चारों ओर घूमते हुए वनस्पति और जीवों की बहुत सी प्रजातियां देख सकते हैं, और भी घाटी के आसपास मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज रेडियो तस्वीर हम बना रहे हैं ऋषिकेश की। कल कल बहती गंगा नदी के तट पर बसा एक पावन शहर।

ऋषिकेश के कुछ लोकप्रिय पर्यटक स्थल है ना, उनके साथ साथ जंपिंग हाइट्स भी एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। अगर आपका मन कुछ थ्रिलिंग और मजेदार करने को कर रहा है तो आपको ऋषिकेश के फेमस जंपिंग हाइट्स जाना चाहिए, जो 83 मीटर की ऊंचाई के साथ साथ भारत का सबसे ऊंचा जंपिंग प्लेटफॉर्म है। बंजी जंपिंग के अलावा इस एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉइंट पर फ्लाइंग फॉक्स और जॉइंट स्विंग भी कर सकते हैं आप। और अगर आप इस रोमांच को और यादगार बनाना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी जो यादें हैं आप वो कैच करके अपने साथ ले जाएं, समेट कर अपने साथ ले जाएं, तो आप अपनी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं, वो फैसिलिटी भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

ऋषिकेश में बहुत कुछ है देखने को, घूमने को, समझने को, जानने को। यहाँ का कुंजापुरी मंदिर, ये मंदिर ऋषिकेश में 1645 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से उत्तर में हिमालय की चोटियां और दक्षिण में ऋषिकेश, हरिद्वार और दून घाटी के मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। कुंजापुरी मंदिर, ये कुंजापुरी मंदिर ट्रैक जो है ऋषिकेश में ट्रैकिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु कुंजापुरी मंदिर आते हैं। ऋषिकुंड, ये ऋषिकेश की जान है। ऋषिकुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का तालाब है, जिसे शहर में एक पवित्र जल निकाय माना जाता है। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस कुंड में स्नान किया था और इस जगह गंगा और यमुना एक दूसरे से मिलती हैं। ऋषिकेश आने वाले सभी पर्यटक, लगभग सभी पर्यटक ऋषिकुंड में स्नान जरूर करते हैं। बहुत खास है हमारा ऋषिकेश, बहुत पवित्र है, बहुत अपना है हमारा ऋषिकेश।

बसंत ऋतु में ऋषिकेश में विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ होती है, और हरिद्वार जो है ना, वहां से ऋषिकेश जाने के लिए रास्ता जो है पैदल वालों के लिए राम झूला और लक्ष्मण झूला, इन दोनों झूलों से होते हुए नदी के तट से ऋषिकेश के लिए जाता है। नदी के किनारे किनारे पूरा तट फूलों से सजा हुआ, पूरा रास्ता फूलों से सजा हुआ, बहुत ही सुंदर और सुहावना लगता है। ऋषिकेश में राम झूला और लक्ष्मण झूला, इन दोनों के बीच है स्वर्ग आश्रम। इसकी गिनती भारत के सबसे पुराने आश्रमों में होती है, और यहाँ पर योग और आध्यात्मिक कोर्स कराए जाते हैं, साथ ही यहाँ सत्संग भी होते हैं। गीता भवन है पास में, वहां पर ठहरने की व्यवस्था होती है। उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, इस मामले में राजा जी इंटरनेशनल पार्क है सबसे खास जगह है। यहाँ पर या तो अपनी कार से सैर कर सकते हैं या फिर जीप सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। कई किलोमीटर लंबी सफारी में आप हाथी, बंगाली शेर, मोर, भालू, कई जानवरों को करीब से देख सकते हैं। तो फिर जल्दी आ जाइए ऋषिकेश।

0: करी।
1: इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं अभी चलती हूँ, लेकिन आप बनी रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM कूल चैनल के साथ। 12:10 पर घर आंगन प्रोग्राम होगा सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM कूल चैनल पर। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: Medium wave kilohertz check song up chungak sum yang na meters kim kya ke chu gyap jitang chu zur gu tang FM megahertz kya tang check tang chu zur chi kang aje akashwani le ni shun jek tang in ni me chu zo chung ye chadu ka sada chung ye stang pe chuk pa fel melorik sanjas la polen en a chame sans kun la lata mangesh kar tang shabir kumar ni pyar jhukta nahi fel melo sanajat लोर समाजात का मैसेज बिहारी तंग लुयांग स्टिगजात कन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसिता किशोर कुमार ने अमर प्रेम फिल्म लोसनाजात लुर्चमाजात का आनंद बख्शी तंग लुयांग स्टिगाजात का आर डी बर्मन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसता स्तन जिंडोल कर तांग ठपाने सलकने जुंगलूरिक सनाजात

0: ngaje akashwani lene junjektain nime chuzo chekchadu kasata tu so chapi gesting ne akashwani dilli ne hindi tang angrezi na nasul sanachat
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे वे ऊर्जा अवसंरचना स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य संगीत कला आध्यात्मिकता विज्ञान व्यापार वाणिज्य समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया वे 77 वर्षीय थे श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Paharpur to celebrate her 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Centre and Paharpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public programme at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Odisha government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dounagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Divas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature,

जय हिंद। फौजी भाई, आज के समय के प्रोग्राम में सुनेंगे फिल्म गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में यलगार फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं सुदर्शन फ़ाकिर और संगीतकार चन्नी सिंह।

जब सुनिए अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल की आवाज़ों में दिल तेरा आशिक फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

अभी आपने क्रिश फिल्म का गीत सुना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार थे नसीर फराज और राजेश रोशन। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में लगान फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार ए आर रहमान।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: फौजी भाइयों के लिए इस प्रोग्राम में अगला गीत सुनिए, के की आवाज में, हार्टलेस फिल्म से। गीतकार हैं सीमा सैनी और संगीतकार गौरव दगांवकर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए अब सुनिए हिमेश रेशमिया की आवाज में आशिक बनाया आपने फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: खबरों के महकमे में भी काम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल की आवाम को मुबारकबाद दी। खबर मिली है कि इसराइल ने जुनूबी लेबनान के सजद इलाके में जबल अल राफे इलाके में हवाई हमला किया। यह हमला कल लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के फौरन बाद किया गया। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। ब्राजील ने आज फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। ग्रुप सी के इफ्तिताही मैच में मराकश से ड्रा के बाद ब्राजील पर इस मैच में जीत हासिल करने का काफी दबाव था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमराह ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल मुलगिर मॉक ड्रिल का इनकार किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर पहली जीत हासिल की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, a third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil registered their first win, defeating Haiti 3-0. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today offered prayers at the revered Santhali Jahera, Goshani Peet and Ho Jahera sacred groves in Paharpur village of Odisha's Mayurbhanj district. He was accompanied by President Draupadi Murmu. The Prime Minister also explored exhibits showcasing the rich tribal heritage, traditional crafts and indigenous products of the region and interacted with local residents to learn more about the vibrant cultural traditions of the tribal communities of Mayurbhanj. More from our correspondent from Rai Rangpur.
2: In a significant outreach to Odisha's tribal heartland, President Draupadi Murmu today accompanied Prime Minister Narendra Modi on a visit to her village Paharpur in Mayurbhanj district. The Prime Minister offered prayers at the revered Santhali Jahera and Ho Jahera sacred groups and interacted with members of the local tribal community, gaining insights into their rich cultural traditions and way of life. The Prime Minister also visited the Skill Development Center and the SLS Memorial School, where he engaged with students and encouraged their pursuit of education, skill enhancement and self-reliance. He later toured exhibition stalls showcasing tribal products and indigenous crafts of the region and interacted with local residents and tribal youth. The visit assumed special significance as the Prime Minister joined President Murmu in her village on the occasion of her 68th birthday. The engagement reflected a shared commitment to tribal empowerment, educational advancement and inclusive development. The President and the Prime Minister are now attending a major public function at Dandbos in Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government development projects worth over 47,000 crore rupees across key sectors are being inaugurated and dedicated to the nation. Prakash Das for Akashwani News, Rai Rangpur.
1: The President and the Prime Minister are now attending a public function commemorating 2 years of the Mohan Charan Manjhi-led Odisha government. The program will witness the inauguration and foundation laying of development projects worth more than

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
5: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: इना छमे सांसमुल्ला पद्मा दुर्जे सल्कने जुंगलु सनाचात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसता यांग चंडोलमा तांग ठोपाने सलकने शुंगलो रेक सनाजात

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ibu akashwani lein kasata ngijana rigzin amgyal ne thachulgun sanajat single use plastic colches chongches tang mimang zumse nasa gunika phankan gunika ne ta chatpa nenchesno lata sujung nga de shiskun junba vinay kumar saxena kas pelkan nangjin serchik martos kol mingan chesi shukseli rigs gunika yangna single use plastic colches chongche se ka zgagja dampo sala jateno ta ladakh si ka khagji ge nang mimangs chongde gun tang zakhang guni nanga e thoga zgagja tangkhan be gyabgal chuste single use plastic rigs gun kolin yotna yotna tene environmental penalties tong chu chatpa phokches ino tena chokhla single use plastic kimsa skankhan guni kanyang stong ne chatpa lenches no yang tena nangjin le namtu thang tang ladakh si chacham guni kang single use plastic tang delte jung junga zikstok obora chaches no Shami Zonspun Kunzes Angme Dang Nurla Tang Timosgai Lopta Kang Guntang Kamsde Rsonas Guni Hunmedla Zikskor Zate E Rsonas Guni Zikstok Lena Zateno Itus Kontang Yampo BMO Khalse Executive Engineers AEE Tang Zedio Khalse Gun Jukte Yotmijuro Timosgai Jui Zinda Chugnis Pel Lopta Kaika Pucha Guntang Pomoguni Fia Hostel Surgings Tang Ryuksi Pia Examination Hall Surgings Zadin Yutkan Be Score Las Kajib Zato Itus Coins Girgan Tang Lubtugun Nyampo Jaltat Zate Lubta Kainang Lubtuguni Transka Manga Chuches Kakchan Inkantang Mentorship Degrim Shulcheseka Shet Salazato Inatola Zonsponis Timos Gai Dani Kamde Sonas Perzot Kantang Kar Gunpa Gunika Sarjeng Se Las Dulin Youth Khan Guni Tatok Sat Lena Zato E Ziskori Jingslar Zonspon Kunzes Angme Timos Gai Ladakh Model School Anganwadi Sonas Gunyang Ziskor Zateno Nurle Nanga Medical Sub Center Anganwadi Tang Jinder Gyatpe Lopta Khan Guni Ziskor Zateno Junil De Ches Nishu Rgyadi Ejaga Konsa Lame Namten Galwang Thamjat Khenching Zikspa Chinpo Chok Ladakh La Chipsgur Kyang Zaches Inkan Ba Ziks De Assistant Commissioner Revenue Le Delex Namgyali Uskyong Nanga Zikskori Tadi Guni Skor La Sundros Zaches La Sponbo Chinmo Guni Dani Sospa Jik Boda Zato Sospe Skabs Zikskori Rings La Peblami Circa Shunskyobi Tadik Mimangstang Motor Kurlo Guni Chayong Circa Tadik Guni Skor La Jipsal Atrozdur Zato Inatuzla Ladakh Nangpe Sokdi Uskyong Siring Durje Lagroges Tadik Gun Tusika Drupchukches Tang Jan Rgozdum Khakchan Guni Skor La Yua Pula Zato Sospe Skabs Rgozdum Guni Skor La Ladakh Nang Sokse Chosne Chachang Tojik Choste Salches La Yua Pula Zato E Sospe Nanga Ladakh Nangpe Sokdi Tipa Gonchi Lansok Se Tipa CMO Le ASP Le CRO Tibetan Refugee Tang Jan Laskun Soso Tang Police Sponbo Gunis Khak Lena Zateno Ladakh Si Skat Tang Shizrik Lukshol Chukpo Gun Skyopste Borches Tang Tarkyap Zache Se Pia Kompa Somajik Spa Zate Ladakh Sujung Shnazde Yungtsir Pe Chokne Shizkun Jun Bekane Snawa Lente Shizrik Lobde Yangna Ladakh Academy of Art, Culture and Language Se General Council Tang Executive Committee Tsir Nangjin Tsuga Zateno Yang E Committee Gun Chukches Ne Shizrik Lobde Autonomous Institution Tsula Chaklas Zachesino University of Ladakh Department of Sports Tang Tribal Research Center Kargil Ngiske Zungde La Tsuklak Lomnir Khan Nanga Ngistung Ishur Sarugi Yoge Erdunjak Atadik Chua Zateno E Degree Menanga PM Shri Menji Jung Jindar Chupe Lobda Khan Lobtuk Jipchu Jigis Khak Lena Zateno E Degree Men Lobtit Assistant Professor Dr. Janardan Tang BPESC Lubtuk Nises Zateno Dean Academic Affairs University of Ladakh Chosne Jurkan Sarpel Igejik Nangzin University of Ladakh College Guni Nanga Undergraduate Program Pia Tukdot Yutkan Lubtuk Restospa Guni Fia Admission Lenches Tingjuke Assistant Junil De Ches Sumchu Borte Yoteno Tukdot Yutkan Lubtu Gunis Ranrais Nyanjugun online gute Samrat admission portal kaskang Nyanchesino NCERT Rastriya Bal Vigyanik प्रदर्शन नंगलोगा ले डायरी सोना से का अर्जुन इल्दानी सीनियर साइंस एग्जीबिशन निस्तोंग निशूर सरुक ठंसपो तांग्याम पोटाड़ी के चुआ जातेनो स्टेम फॉर विकसित एंड आत्मनिर्भर भारत योजी का बोरखान इ डिग्री में नंग अर्जुन यूंग तांगेरी लोपटा खंग मंगपो जिग ने लोपटु गुनीज खाक लेना जातेनो इ ड्रिम्सटोनी डिग्री में स्काप लोपटु गुनीज चंद्रिक्स तंग डेलपे प्रोजेक्ट स्नासो जिग्रा पुला जातेनो दंग तिंगजुगे जदगुए स्कब्स लोपटे युनता निज को ट्रोची बनु पर्वा स्कुंडो चुला थुसा जातो इ तुज अंग्रिम लोनखान लोपटु गुनला स्कुंडो तंग जन स्कुंडन पा गुनीज सोल्जर्स गुन उसगोस्ते सला जातेनो श्मकमी रेजमोन जंगपे छर्जी नंगलोगा ग्यगारी अश्मकमी चोसने परमा गम्युले नंगा खमजदे जिक्सतो डिग्रीम जिक अटाड़ी के चुआ जातो इ खमजदे केमी रिंग्सला डॉक्टर गुनीज जुक्सपो तंग असुए खमजदे अल्तातोक चुआ जातो यंग रुगोजदुम चन गुन लास्मान गुन उसगोस्ते सला जातेनो इ डिग्री में नंगा गम्युले छेचुंग मंगपो जिगेस खाक लेना जातेनो इ तुस गम्युल पा गुनीज ग्यागारे श्मकमिया इ चोक्सी डिग्रीम अटाड़ी जाचेस पा थुजे छे जुआ जातो इनाउतांग्यांपो आकाशवाणी ले ने नचुलथोन
1: गजे आकाशवाणी लेने चुनचिकाइन निमे चुचो सुमतांग स्कर्मा चिक्षा दो गिना बुतांग यंपोंग जे दिरंगे डिग्रिम तांग पोथोन डिग्रिम गिस पेपिया पितोगे चुचो थ्रिंगे का यांग जालें थे चुकपांग जा गंस पसला जात

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गजे आकाशवाणी लेनी चुत पितोगो चुचुत अर्गनास कर्मांगी चुर जब दुन चादुक कसदा स्तांजिन्यां रोले सलकनी लुजिक सनजाद।

कसता लता मंगेशकर ने वो कौन थी फिल्म लूसन अजत लूर सुमकन राजा मेदी अली खान या लुआंस रिकन मदन मोहन।

फिल्मिलो एडिग्रीमेस थिंग जुक पिका दाख संगे चुरंगे असली नकली फिल्मिलो लता मंगेश करने सनाजाज लुरचोम का निपिन शैलेंद्र यहाँ लुआंग श्रीकन शंकर जयकिशन नजे आकाशवाणी लेने चुनजिकता है।

0: زود گونه پیدی که نبچوخ سی لویان سی دیگریم سنازدین دیرین دیگریم پلکن استانزین لدول. گاسا تنگجه توری سنگی می دیگریم گونیس گرگون جونا دیگریم تنپینا توری نگا توی چو زود دون ناس کرما. سمچو سوگنی سکا گیت سلما استانزین دوانی اوزیر. ngato chusul dunnas karma sumchu subduni ka ngaji degree ngune score ngato chusul dunnas karma jipchi ka tat panaji ne degree sanchez la polin thore se degree minas kon la sonam dorche tan thopani pulkani sungur ester soni tan thopani pulkani gurma ya tat panaji ne degree misting juk pika se wang pun chori pulkani chuslu sanazadin ngato chusul gyadika akashuni delhi ne samiche prabhat gyanas karma choi ka morning news thore ngato chusul gyanang pedika sring ta shitang thopani salgani lorik sanazadin ngato chotot gui ka la dasna natul ngato chotot gunas kar mashchi ka nasan se fedi krim sana zadin torres de krimina to ka nam skan gun lobzang andus sevang punzo kunza jol ma de chenang motang tsring dol kar gun digrim dia zat kan sku jabs etcetera chu yang digrim e kodik zat kan tsring chorol ngato chotot guna pe de ka flemelorik ngato chotot gunas kar majib chu jangani ngato chotot chu zapa jamun kashmir bank e chinta zat kan digrim jain ke bank dairy sana zadin ngato chutot shuka tuguni fe degree sana zadin tugis kitsel tore se degree nangi jirangi padma nurzin ne tamdil tore se degree nangi jirangi army goodwill school karul of tuguni choks ne degree sanchez la polin ina tuguk tugu tukak namskan gon jigmet odan dadul tonyot spalzang dania benish stanzin wandus spalze sianchen jigmet stanzin desel Miskyot Wangmo, Stanzin Idmong, Dolkar Wangmo Tang Mikmer Dolmagun, Degrim Pulkan Padma Nurzin and Degrim Kodik Zatkan Tsering Chorol. Ngato Chuzot Oshchunang Pedika FM Gold Dili Degrim Gon Sanazadin. Nime Chuzot Chugnisika Filimilurik Chugnisnang Pedika Skun La Padma Chondole Salkan Lui and Tsinitsevan Urbutang Tsering Doji Salkani Lurik Sanazadin. Mami khotan jigrimina filmi lu sanazadin toringi mi chuzo chiktans karmash chune chiktans karmang apchu chakpa. Ngimi chuzo nistan pe ni nistans karmang apchu nga chakpa padma chondol. Skonla padma chondol e salkan lu yanta sinis ma la chondup tan siring moro be salkan ilurik sanazadin. Yan jigrim tanpe stingjuk peka ngimi chuzo nistans karmang apchu nga eka la daksen natsul sanazadin. Kasata ngashi toresi ngimi jigrim nispes korgon juna. Jigrim nispe na pitore pito chuzo Shkan askar mashngi kas mon la Padma chondol salkani lu yang testing ni tsiring dol kartan tsiring dol mesalkani lu rik sana zadin. Pito chuto shkan apetika film melori shkan askar mangap chungai ka ngaje degrim gunis kur. Tore pito chuto tuktan askar mash chika gamil peskar lon degrim sana zadin. Tuktan askar majib chika mamikotan degrim na film magazine degrim sana zadin. Tore se degrim pulkan shenas Fatima. Tore pito chuto dun askar machungai ka la daksana tsul na testing ni delchat dun na apetika Zefodin tan tundub doji salkan lurik sanazadin. Tore san chutot gyadika rik jungeste digrim sanchez la polin tore se digrim pulkan geshe tsultim tarchin. Yang tore san chutot gunang pedika sanzin paljortan sunam doji salkan lurik sanazadin. Kasate gunin pin ngaje dinin digrim nispatan tore singi me digrim gunis korgun. Ngaje akashwani lani chut. Pito chutot tukchadu kasata akashwani delines gun la hindi yanta singi anrizina nazul gun sanazad.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उड़ीसा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
2: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. Kendra sarkar ka vision hai पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
3: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the Prime Minister arrived in West Bengal for a two-day visit. He took part in Paschim Bango Diwas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the state day. Along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, he launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. The Prime Minister will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Doonagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur of worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major centre of faith for devotees from across the country. Union Minister of State for Information and Broadcasting L. Murugan reviewed the organisational preparations of the BJP in Goa during the party's State Executive Committee meeting held in Panaji today. Addressing party workers, Murugan stressed the importance of ensuring that central government schemes reach every eligible citizen. He called for further strengthening of the party organisation across all 40 assembly constituencies in the state. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination FDC drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. In cricket, Afghanistan have set a target of 219 runs for India in the third and final ODI at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. Electing to bat first, Afghanistan were all out for 218 in 44.2 overs. Captain Hashmatullah Shahidi was the top scorer with 102 runs off 131 deliveries. In reply, India were 37 for no loss in four overs when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: ngaje akashwani lenijut pitog chuchu tuktans karmaschu chadu kasata jing pesons kadikrim sanajat dine dikrim phulkan gun hasina banu tang riksinam gel

जय हिंद फौजी भाई, आज हमने इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गाने। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं काइट्स फिल्म से ये गीत के की आवाज़ में।

आइए अब सुनते हैं नमस्ते लंदन फिल्म से ये गीत, हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कसूर फिल्म से ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। समीर की लिखी इस गीत को संगीत दी है नदीम श्रवण ने।

0: Akash Fani Chokner Chitsokla Jabstos Gangshan Yuat at Khan Gular Siva Fulches Tang Kongi Chalas Zampo Gunmimans Kulamun Chukches is Mijit and Yampo Mixale Digrim Jik Sanchez Lapun Jitano Diringi Digrim Benanga Soar Ripa Yerges Salches Etoga Chalas Gangshan Zatkantang Stilongistong Issues Tarugi Padma Shri Zingstas Namskan Doctor Padma Gurmet Escola Sanchez Lapulin
1: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को सोवा रिग्पा 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा नाड़ी देखकर बीमारी समझना दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी
2: शुरुआत में सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है काफी घुटन भरा था छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था
1: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं उसे मिली एक नई जिंदगी डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद पद्मश्री 2026 कोटि कोटि नमस्कार
0: लद्दाख से जो शेरिक इसकारिक तंग जन लुक्रोल जंपोगुन शुंस्कियोप जाचिस तंग मिंगियम्स कोंगपेल जाचिस मिग्जी तंग न्याम पो लद्दाख उजुंग अजदेर शिशकोंग जोन बा वी के सक्सेन नस संगवा साल तेरतिंग ने इजुंग इशोक्स ने लद्दाख उजुंग अजदे जो शेरिक तंगस्कात की लोब्जदे बो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जिगित्सुला शुलचेस से वांग छा सला जाते नो इजुंग इशोक्स ने ई थकचत अलंचेस ने शेरिक लोब्जदे लासिर तंग डिग्रिम गुन टालिक जाचिस नंगा इजुंग डिक्टिम्स गुन लोटपो जाचिस नो यांग शेरिक लोब्जदे Sir Nangjin Shulches La General Council Tang Executive Committee Ju State Sospa Ngis Tsugazatenok General Council in Anga Shishkyong Jonba Chief Patron Yangna Golden So Tang Tungik Chen Mo Council Li Tipa Tang Jana Thuzmi Guni Toa Le Tang Kargil Ngis Kwe Rangskyong Sospe Thuzmi Gun Tang Ladakh Si Zo Sherik Tang Skadik Laskha Nanga Khaspa Gun Yongchesenok Tena Tsok La Executive Committee Nanga Ujung Ngazde Sherik Laskha Gatumshi Ujuk Sinanga Delo Thuzmi Gun Yotenok ई नाचुलगुन नेजरंग हनगेसला आकाशवाणी लेने संचिला फुलिंजिकताइन थोरेज यांगना जुनी छेज निशुर सक्षिग जागा गेगर गंपेनांगा जमलिंग स्टील दानी योग इजाक स्टीचेस्तांग रेलते टाली गुन छचांग अंडुबिनीनो श्रीलोन नरेंद्र मोदी जिंगिस्तोंग चुपजी नांगा स्पास पेस ताना जा तेरतिंग ने रिगेलची थुनरेली छोकने जुनी छेज निशुर सक्षिग जापो जमलिंग स्टील दानी का योग इजाक स्टीचेस सी कैप्टक्स जा तेनपेन गेगर नांगा दिलान जमलिंग स्टील दानी योग इजाक जात गो छेजोसपो नुपचोक्स बेंगाली रेड रोड का टाली के जाचेजनो कानांगा श्रीलोन नरेंद्र मोदी स्कुनरोस्चे सुला थुसा जाचेजनो tena chokla lenanga thores jamling shil dani yogi jatgo cheshos po spitugi open stadium ka talik jache jeno yang shrijin jon ba cp radhakrishnan skundon se chula thu sa jache jeno le dairy choks ne urjong e lopta so se lopta kuni parla stem for viksit and atmanirbhar bharat dir jo ji ka urjong ildani chanjik si demston ranju ji ki talik jate no e demston nanga urjong e kamil so se ne लपटुक छिनमगुनिस खाकलेना जाते तंजी चनी जिंग बत जाचेस प्लास्टिक माकोला जन थबलम रिक फिंचेस जो थप सी यरगेस छुई सी थप्स खमजदे तंग संगरा थे ते रजोजी सोसे का रंग रंग डेमस्टन गुनिस ग्रा पुलते नो डिग्री मी जुगजी जत गेस कप्स लदा खुजुंग अजदे थर्मियन तन लस्का का टुमसी बानु परवास कुंडन अरचे छुला थुजा जाते नो यंग डेमस्टन नंगा अंगरिम लोनखान गुलना सोलरास कुन उसगोस्ते सालते नो Shmakmi Fire and Fury Chokes ne Operation Sadbabne degree min nangloka Changthangi Parma Gamili nanga Rin met pa khamzde kem jige talik jate nok itu Shmakmi Doctors Gunis Gamil pa gunla Rin met pa khamzde jigsok jate sman gunz go se zalta nok e kem pi talik jache se mikji bo Ladakh si satsam si Gamil thagring si mimas kunla khamze jabstos kun lamung yam po thop chuk ches tang Shmakmi tang mimas kun parla Delux kun martan po jache panok Kargil Vijay Diwas Sikhak Chikitsula Shmakmi फायर इन ऑपरेशन डिवीजन माउंटेन इच्छोक ने जुनि से चुने फरला रिजंग लाई माथाप से टनते निकाने दरा सुखपा बाइसाइकल एक्सपीडिशन जिगे टाड़ी के जाते नुख ई रिंग्स ला एक्सपीडिशन इन अंगा खाक लेनखान गुनिस नासा सोसे का एनसीसी तंग जन यूनु लपटुगुन तंग थुगा जाते कारगिल माथाप से नंगा ग्यागारी मकमी गुनिस पालचल टापो सना जात खान तंग यूली छेवा थनपो बोरखान गुनिस कोरला शरा जाते नुख स्कैबजे खंटुल कंचोक तंजिन रिपो छे छोक दंग अर्लिंग देचन छुस्कोरलिंग गोनपा ने श्याम युजों लाफेप जातनो इतु स्कैबजे रिपो छे छोक इस नुरला कमिली नंगा तलन मीमांस कुनला आपची छोस की डोल में रिगुन खेरगी थिल्लुंग तंग कलोप लमस्टोन सला जातनो तेर तिंग ने खलाच आफेप जाते मीमांस कुनला फास्पर चंद्र जी की रिगुन खेरगी जगलुंग तंग कालोप सला जातेनो तेना चोला स्केबजे रिम्पोचे छोगिस युंडुंग थारपालिंग गोनपे नंगा गिदुन पगुनला स्क्योबा जिक्तेन सुमगी गोनबे जापछोस तिंगी जिन वांसकुरगी जगलुंग तंग तलदन मीमांस कुनला कालोप सला जाते स्टिंग ने ड्रिगुंग करग्यु दी आगोन डुबदिया फेसा जातेनो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीरी नंगा निस्तों इशुर सरुक सब्दुनी सेशन इफिया अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तंग पीएचडी प्रोग्राम्स कुनी नंगा एडमिशन लेंचेज ला रेल्तोस पगुनी काने ऑनलाइन स्नेंजु कुन लेन जिक्तानो लद्दाख उजुंग नजदे थोरिम योन्तान लस्का गे छोक ने जोरका निका क्याप चिक नंग सिन रेल्तोस पगुनिस जुनी छे सुमचु छुक पा रंगरा स्नेंजु कुन स्नेंजु फॉर्म गुन छचांस का जातिस तिंगने ईमेल आईडी देलदान एट dot namgyal at the rate UOL dot AC dot inika mail zat kos tanu khujuruk kakya binanga shada zat khan nang jin admission is circa chisal nangsal cha chukchi sirmiji tangyampo yungi SOP nang jin juni ches chongani ches sumchu chukpa singanju phulche se ches transport te tanok July LZ ches achigne ches shanga chukpa retos pakuni documents la skerjib zachis nuk July ZSS Atugi Jaga Ospachan Reltus Pagun nominate Dachesnok Yang Ses Arduni Jaga Admission Salchesnok Gypsalifia Delo Laskunsne to Gizatuchesnok Le Luntin Kangute Ladak Sis Natsulguns Hato Chusoturgu, Nimichot Nistanskar Machapchunga, Pito Chusot Hatan, Pito Chusot, Ardun Tanskar Machangunica, Sanchez La Polinjitano, Mimans Kunis Ladak Sis Natsulgun, Facebook, YouTube Tang Ex Kunikang, AIR News, Late Gutang San Tuchesotanok. आकाशवाणी लेनी तार नसुल थोन का सतंगी जरांग इस डेलचा सनजा
3: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने चौक ने टल्डिक जोकर ने जिंदा चुपा तंग जिंदा चुगनी स्पेक युक्स पहले जिसला ता तुस्मंग पोजिक मालूस mangpojiga yuks ngimo leba chik semdum tang semcher yongchis machat nit meyongchis tokse skala jungkhan bo ngatanga chorin yongani nok iskalas loptuk chik ni siskalas manok iskalas bo tangska mangpe nanga loptuk kula yongchis pe skalas chenmoji gyurtyo teno te fiata central board of secondary education e chokni laptun tangchis gozuk jat chartyo teno loptuk kula labjagun फोन जिक सलचेस तंग न्यापो थोबिन जिक तंग अनोक खादा लम्स्टोन जिक लेंचेस ला लोप्टो कुनी टोल फ्री हेल्पलाइन 1800118004 का फोन सल न्यांचेस नोक यंग हिंदी तंग इंग्लिश इसका निस्के नंग लम्स्टोन सलचेस ही टाड़ीगांग जाते होते नोक स्क्योत पा गलते सुजिक ग्युक्स तंग डेलते सेम सेस कला जूना तेने ई फंतोस पो लेंते सेलचे सी नंगा रोक्स थोबजे चेसेनो तेना चोला गलते लोपटुक जिगा ग्युक सिफिया सिलुन योतुस सेमसेर चोक्से स्कालास गुन जुंगना तेने ई फोन नंबर का जालता सालते स्कालास सेलचेजला रोक सालचेजला तेने जोंगदर लेन खान दोम्स खाजबंग दुनचु तोनसुम जिक सीबीएसई चोकने स्कोस्ते तेनो तेठवा लोपची काउंसिलर स्पेशल एजुकेटर तंग सेम से खमजे जिक्सखान योते नो तेने कोंग दुंचु तोनसु मिनंग ने टुकचु रक्षिक पो ग्यागरी नांगा चगला जादेने नो जनंग चुगनिस यूल स्पेरना नेपाल जापान कतर ओमान तंग यूएई गुनी नांगा जुक्स्ते लोपटुक कुलनान लपतोन तोन सालिंजिक तानो ফোন গুতে খাদা লামস্টোন সালচে সং নিয়ামপো ডিজিটালি রোগ সালচে সি ফান তোক জোতে নো স্পেস না সিবিএসই নিয়ন্ত্রণ চুন রিগ গুতে খাদা লামস্টোন স্কাদিক সোসে না মাছাত ইয়ং পডকাস্ট গুতে হাগোস পেলেন জিকতা নো সেমসকাম ট্রান্সপো বসছে তং কাজুক শিগা লোপচং যাচ্ছে ইন তেস কইলাং সিবিএসই ওয়েবসাইট তং ইউটিউবে কায়োতে নো ইগুন স্পেরা চুমুন জেগিন নং নংমে লালুস না ইয়াং গুস বেদা জুগস না তিন ইতু স্কুল চেসি শ্যাং স্কুল জিগিন ই চকসি খাদা লামস্টোন বো লোস চুটাক নিজ নে ফারলা সিবিএসই লাগলে না কেউ চিকতা নক গুকস খাকচান ইনক তেবো চংমে খেন খেন পার নক গুকসি আংটং সং গেল চক লেনচেস নং নিয়ামপো সিমস কাম জংপো বোসচেস পং খাকচান ইনক সেমস কাম ট্রান্সপো মেট না স্কালাস না চিক নিজ মানপা না মংপো জিগুং চেস পো নান্তান ইনক তেফিয়া সিবিএসই তুজগুন লোপঠোক তং ফামাগুন না ই চকসি ফান্তক লেনতে গুকস গুন সেমবার লো লো যাতে সেম কাম জংপো নং গুক সালচেস লা সেমসুক তং সেমস্টপ পারেন জিকতা নক গালতে লোপঠোক জিক সেমস কাম সে তোকনে রোগ লেনদো দিওর না তেনে জাল জাওয়া নে যা পাসং চোপা টেলিকাউন্সেলিং সার্ভিস জানুয়ারি দেছে টুক ইজাক নে ফারলা গুজুক যা ছাড়তে হতে নক টেলিকাউন্সেলিং ই সার্ভিস গাঁতো চুচো গুতং ফেট নে ফিতো চুচো গাঁতং ফেট চোপা সালেন জিক তং নক ই জাব চোপো লোপঠোক কুলনা জুনি দেছে চিক চোপা থপচে সে নক তেনে চোখলা টোল ফ্রি VRS 1800118004 ছানগিন মেত বা দুঞ্জাক গাং পো ফেসতে বসে সোতে নক ই বসকিয়ত সিবিএসই ছকনে লোপঠোকে সেমস কাম ট্রান্সপো বসছে সেনা লাস্টিস চিগিন নক তেবো নাং নিয়ামপো লজুং রুক সেপিয়া রংজুং জাদিন ইয়তুস শিলু নরেন্দ্র মোদি পারিক্ষে পে চাষে গুতে লোপঠোক কুলনা সেমদম তং সেমসের রে ছোলতা গুন মেত কান চোচে সেপিয়া টালিক জাদিন জিকতাং ই রিংলা কাজুক শিগি ছোলতা জুং নাং তেবো স্কাবলা গুসচেস তং রং এ নাং স্কুন তং স্কালাজ মেত কান চোচে সেনা থাবলাম গুন দাচেস লা সাদিন জিকতাং তেনে জিন্দা টুকপা জিন্দা চুগিস পে লোপঠো কুনি ইয়ংচেস চানে পারিক্ষে পে চাষে না থুকাক লেনিন ইনা তংপো আকাশনি লেনি তার ডেল চাতন
4: গজে আকাশবাণী লেনি যুত ফিতো চুচোত দুন পেছাদু কাসাতা চিমেন রোল কর তং স্তানজন রোল মেসালকানি লুরিক সনাজাত

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: चिमे डोल करता स्तन जिन डोल में सलकनी ई लुबान सनजाद।

0: प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: पीएलआई है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसता फंसवा टाटन ठपाने सरकनी ई लुगना सनजात

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसता लदख से यहाँ से टिक्षमिना न्योपेश से यहाँ सनाचात

0: Dans son ingénieur, la docteur de séance de Grimina, pour dire de séance d'un, il y a plus de séance qu'on s'en a dit. J'ai Akash Wani Lenijut. Sani Chutot, Gatans Karma, j'ai plus jamais chatou, que c'est Akash Wani Delini, sa majeure Sandia News et Nantan, Urdina Nazul Gun s'en a dit.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया, कहा वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है, ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की, 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
4: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551

0: शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले

0: 880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का योम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: योग का बैन अलावामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अलावामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तमाही बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग के खसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राबतों की भारतीय कौंसिल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2500 मकामात पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकामात पर योगा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शांति पथ के लॉन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, सीपी सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन शामिल हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तसव्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदामात का जिक्र कर रहे हैं।
3: गुज़श्ता 12 बरस के दौरान हुकूमत ने मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ढांचा जाती इकदाम किए हैं। बाख्तियार भारत के 2 सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की जबरदस्त तरक्की हैं। 76,000 करोड़ रुपए के बड़े अखराजात के साथ दिसंबर 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का आगाज किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमी कंडक्टर मिशन के दूसरे मरहले का आगाज किया जिसका मकसद सनत की क्यादत में तहकीक टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए तरबियती मराकज और मुस्तकबिल के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तश्कील पर जोर देना है। सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निजाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
4: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
3: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त दी गई जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमी कंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, सीसीटीवी, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। एनटीए ने कहा है कि वो बिला रुकावट मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
6: मुशाहिदीन, राबता कारों, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तिहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बरवेकार लाया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तिहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ जीपीएस वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। एनटीए भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है ताकि किसी भी तरह की गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दस्तावेजी अमल को मुकम्मल करने, उसकी तस्दीक और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफी 15 मिनट फराहम किए जाएंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया है कि आबनाए हुरमुज को फिर से बंद कर दिया गया है। उसने लबनान में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी रहने और लड़ाई के खात्मे के लिए अपने वादों को बरकरार रखने में अमरीका की नाकामी को इसकी वजह बताया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की कि अगर बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदामात भी किए जाएंगे। आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 3 एक रोजा बैन अल्कामे क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो नॉट आउट रहे। भारत को जीत के लिए 219 रन का निशाना मिला था जिसे उसने 28 ओवर्स और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 86 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे कबल भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار امن مذاکرات اور اشتراک کی آواز کے طور پر ابھرا ہے کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ معاملات کو جنگ سے نہیں بلکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جناب مودی نے اوڈیشہ میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23ویں قسط جاری کی. وزیر اعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی ٹیم کی تقریبات کی قیادت کریں گے. اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
7: ngaje akashwani lenijot sani chuzot guna pe chaduk kasata nubchokse luyang se dikrim sanajat dire dikrim pulkan stanzin la dol